0: 있어.
1: कुलबट विसी पहाकट अधिक संख्या के समन्वित जात्यंतर मूलतन गे जाएगा विजया।

बिंदु बिंदु तारका खंदुलु मालविले उमतु भी संदायो भाई इनहुना रहे सुबह पे तुम मगा दे गीतिका ऐसे अहिमी वो आदरे रत्तियु बीबी अभी तो मगे हैरिच अभी तो दैनिच अभी तो हादवते रंदुनु ऐतम प्रेम कथा अभी तो दिनागंड बेरु है ना ये दिनागंड बेरु वगी प्रेम यं सदाकाली कव अपे हित्ते तुले राज्य वेलाती ना ये दिनलाती है नी एवार मां की वो वगी अरे तारका वगी पिच्ची पिच्ची पिच्ची पिच्ची उंगा क्रांत्रीन वाले अपे जीवित अत्यक सारनो एक समार वेला बट अपे सातुरीन सिटी ने वेला वक्त इन्न पुलवां मधुविंग इन्न वेला वक्त इन्न पुलवां मैं कोतना हूँ ना अपे मैं सिद्धुवी मत तेक जीवित गेवनो लोचन बुला सिंह रचना करनो संधमाता आदरे सैय में भी व्यक्ति मामरगी इत मालकरों से ले तानी व्यक्ति माने वेलपे कोलावने उगा कादर गता एम दिनन बेरी कता है तुली अपिसारनो एवं मताक्वे न कोटे ये मताक्वी म अमतक्रण अभी उंगा केलावट मधु वित मी विता तेक अभी एक तुवे न वेलावल तीनो विषम मधु पूरवा आविते गेनदी दो तीन नो भी है भई एम पहलंब भी मक यम संकल्प एक पिसिंग ऐतिकलत यम संकल्प मारन अभी एम पावी चिकलत इके मेन्ने तावदुर ठक ऐविले नेग एम हित ऐविले न मिनिसु ओन तरह मिन्नो एक टाइम गे चित्रपटे अभी न मताक क्यों गुणदास कपू गे मगायना करनो थानी में एक टाइम गे गिला उन माद सितुआ में वेदिले मीदुम वाला में द अतीते बिंदुनु पेमिन गिनी गत्था दवात थानी में एक टाइम गे अबे हित एक टाइम गे वालवागे एक मतबाई मितना हापु हुआ पिट मातु एन्नी माहद सैय दवा दैस निवा नंगवनु मंदहास मेन मावते अडु तरमिन मियायन मोहते हो हंस गीते गैयन मोहते हो ओब पैमिन ओबे सिनाव मंदहासे नंगवनोना एक सैनसी में मेरेन हरिलासन तेना